0: ও ভারে খন প্রল সৈনি হতার নাই না হয়ে আছো
1: মেওয়ানে বা ছেজি তারে মুই পিবা মিমামি মার্বলারি প্রিমা বিরা দেশি সারা মুবা গঙ্গা আর্ট গ্যালারি ইয়াব মাইবা আছো
0: নাই ইয়াম বিরা তয়ার তড়ি বা তারে নাসর বজার লম্বি মু মেডাল কাপ ট্রফি প্রমাণ পত্র ব্যানার কো বনেল পর্দি বিরা ইয়াব মাইলো খারে তারে প্রে আনো সেদি
1: স গঙ্গা আর্ট গ্যালারি তো তো বনেবরা আছো
0: তরমী মার্বল আর ফ্রিবা সাইন বোর্ড হোর্ডিং বোর্ড লাইট বোর্ড জম্মাই বনিম রো ফটো প্রিন্ট টি শার্ট প্রিন্ট স্টিকার কটিম লম রো সাল অসি ব্যাজ দে মায়া চিলো বনিম রো
1: তৈলে ভনে কো মইলে সবাই বুঝো কাঞ্ছা গঙ্গা আর্ট মা কে কে পাইছ ভনেরে এক পটক তৈলে সবাই ভন্দিও তা নেপালি ভাষা মই
0: বেশিসার নগরপালিকা সাত পুরানো ব্যাংক চোকমা রয়েকো গঙ্গা আর্ট গ্যালারি ফ্লেক্স প্রিন্ট মা মার্বল আর্ট ফ্লেক্স প্রিন্ট সাইনবোর্ড হোর্ডিং বোর্ড লাইট বোর্ড ব্যানার ফটো প্রিন্ট স্টিকার কটিং কপ প্রিন্ট ব্যাচ প্রিন্ট টি শার্ট প্রিন্ট গরিনুকা সাথাই মায়াকো চিলো প্রমাণপত্র মেডাল র ট্রফি পনি বনাইন্ছ সাথে হামি কাহা ললিত কলা মা অধ্যয়ন গরেকা দক্ষ ব্যক্তিবাট ভিত্তি লেখন আকর্ষক পেন্টিং হরু বনাইনুকা সাথে বিক্রি বিতরণ গরিন্ছ
2: পবিত্রা গঙ্গা আর্ট গ্যালারি এন্ড ফ্লেক্স প্রিন্ট বেশি শহর নগরপালিকা সাথ পুরানো ব্যাংক চোক লংছং প্রোপ্রাইটার বিনিতা দেবকোটা র গঙ্গা হিমালি ঘিমিরে সম্পর্ক ফোন নম্বর 0665313387 মোবাইল নম্বর 9842646648 র 9463601883
0: किन हाँस्या नि बुढा तुलाई फर्किने गरी
1: तालबाराही डेन्टल केयर सेन्टरमा पुरै दाँत हालेछन् बुढाले देखाउनलाई होला नि तुलै थर्किने गरी हाँसेका
0: हुन त हाम्रो बाले नि तालबाराहीमै राख्नु भयो के अरे दाँत अहिलेसम्म भोलियै छन् लोकल कुखुराको हड्डी त चपाउँछन् बुढाले
2: तालबाराही डेन्टल केयर सेन्टर प्रालीमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त दन्त सर्जन डाक्टर अरुण कुमार शाहद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरू दाँत सफा गर्ने टल्काउने र सामान्य शल्यक्रिया बच्चा तथा वृद्ध वृद्धाको दाँतको विशेष उपचार भर्ती हुनेहरूका लागि दाँत कलरको सिसा रेजिन कम्पोजिट भर्ने नदुखाइकन दाँत निकाल्ने दाँतको एक्सरे गर्ने नमिलेका बाङ्गाटिङ्गा दाँत सिधा गरी मिलाउने दाँतमा सिसा सिमेन्ट र चाँदी भर्ने फिक्स दाँत राख्ने साथै दाँत झिक्ने राख्ने र बनाउने मुख गनाउने दाँतको हर्ष घिचाबाट रगत आउने सुन्निने पिप आउने रोगको विशेष उपचार गरिन्छ
0: तालबाराही डेन्टल केयर सेन्टर प्राली बेसी सहर नगरपालिका साथ भीमसेन स्थान लमजुङ प्रोपाइटर ज्ञानु केसी सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841632004 र 9191920981
3: हेर्ने हेराउनका साथै उपचार गर्ने हजुर तपाईँको संस्कृति संरक्षण तथा सामाजिक विकास केन्द्रमा धामी झाँक्री उत्थान समिति सञ्चालन गरिएको छ। यहाँ प्राथमिक उपचार तथा परामर्श सम्बन्धी श्री धनबहादुर असरपति गुरूद्वारा दयाको सेवाकाई गर्ने गराउने गरिन्छ। साथै समाजको अगाडि दुःख विराम रोगको विश्वासका साथ उपचार गरिने जानकारी गरायौं है त। रोगको विवरण:
4: कामने रोग,
3: बौलाउने रोग,
4: ढल्ने रोग,
3: मूर्छा पर्ने,
4: सपना नराम्रो देख्ने,
3: डराउने,
4: रिस उठ्ने,
3: तर्सिने,
4: खान मन नलाग्ने,
3: चिलाउने,
4: ऐठन गर्ने,
3: कम्मर दुख्ने,
4: हात खुट्टा पोल्ने,
3: चपाउने,
4: हात खुट्टा दुख्ने वा सुन्निने,
3: ज्यान करकर खाने,
4: महिनावारी गडबडी,
3: बाजोपन,
4: छारे रोग,
3: प्रेसर,
4: सुगर,
3: प्यारालाइसिस,
4: दम,
3: खोकी, टोकेको निलो दाम,
4: मान्छे हराएको,
3: सामान हराएको,
4: टुनामुना लागेको,
3: मेलमिलाप गर्न पर्ने,
4: दाँत दुखेको,
3: बिगार परेको,
4: पैसा फसेको,
3: रक्सी छुटाउने,
4: घर बान्ने,
3: पिनास भएको,
4: टाउको दुख्ने,
3: ग्यास्ट्रिक,
4: जन्डिस भएको,
3: सतुर नष्ट गर्ने,
4: बाथ रोग,
3: बान फर्काउने जस्ता रोगहरूको दैविक सांस्कृतिक गुरुबाट विश्वासका साथ उपचार गरिन्छ। साथै बुटी पनि बानिनेछ। हामीलाई सम्झनुहोस्, निराश हुनु नै छैन।
4: जन्मेर कसले पो के लिएर आएको छ र मर्दा लानुको के छ।
5: सम्पर्क स्थान सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 9 सिउडीबार लमसुङ कृषक जागरण सहकारी अगाडि कृषि विकास बैंक नजिकै। सम्पर्क फोन नम्बर 97 69 77 68 60 97 69 77 68 र 98 21 57 56 36 98 21 57 56 36
3: ग्रह व्यथा गुरुले दिएको ज्ञान कसलाई के था आउनुहोस् सोध्नुहोस् खोज्नुहोस् बुझ्नुहोस् आवश्यकता अनुसारको उपचार गर्नुहोस् रोगबाट मुक्त हुनुहोस् जयराम गुरुदेव।